0: हिना कंतकुरी गोतकी मिसकितु नुकुवेगें गोस मिता कारी गावे बगीचा का बदे हिना तोहिर वेगें मिसकितं आयस अडहर को दिशहा देखिया इस्लाम जे देन इतु रसूल इफान गरी गा देन नेविए ए मक्केदान रसूल आए मीगे कुरीगा मीबि मतीगा कलीफान अपुरे अलगुन रुडियरा मीहे दीन तगु तिरेगा कलीफान गे दीन अपुरे रुडियरा दीने रत्तगु तिरेगा कलीफान गे रसपुरे रुडियरा रसे नुए मिहार एकंत एकोलकोलुन जेही कलीफान अपुरे अलगुन जोबवा अनिके कलीफान गे दीन अपुरे अलगुन जोबवा दीने रत्तगु तिरेगा कलीफान गे रसपुरे अलगुन जोबवा रसे नते अलगुन कलीफान कुरबाने अमरफुले कुरबारे अलगुनी खियमंतिरिय कमगा दिकवडा गन्नवा नुए मिहन दे नीमा इतरो के इफान हदीस कुरे बिए खजेगी खजेगी रसक खजेगी अमदरिंग के गाता दियुम रंगल कम गा देखो डागर नाम है खजेगी किमा में एक जांगे बैकत थे तुम को देखियो में बस इराद कुरो बाफावा कहा जे दे मीना रसक दम अमराए बुम के बेनम का मक्का है अरा इतांगा इस्लाम दीन फाल को गिंग उड़े फिये मक्का के मीहुन रोड़ी अरा फला फला के इंदावर वेगिन थीबे में हम एक कम बस कुरा का नुकेर ने मिकमा एक गा में एना मक्का का हुआ कुले अहुरेंगे रसू के फरातुन तिबामी हूँ न मिरसंग अन्न एब्विस खाना है तिबामी हूँ मोहम्मद गिफानंग ईमान विज्ञो मद्दान दिंग आय का नुदेह रीमे दे मीना रसा गुस दीन गोमुंग ए रसू के वरक गिनमी हूँ इस्लाम विज्ञो है दे यमामत के फरातुन मक्का है दाहा काबो थके थी बंदु को गुरे संघा की मीहुनाई व्यफारी कुरु मना खुफी है मिकम मक्का के मीहुन दति कम बड़वे गिंग इतु रसूल दो इफान गरी हम मीहुन फनवा मिवाह का हुराला इक इफान एना अंगवा फिये तिय कंत दुखल लाहरे मी खबर जिबेन दिंग एना गिंदी एना की कोई कुरियर वम ने एकमक इस्लाम दीन का इजाफ के बे इंसाफ गई गतुम मी हुन एकी एक चकन इंसान न दति कुलो मी एकम नून कम एकम मना करो बैठी इतु रसूल अल्लाह इफान स्वर्ग के वडा तीमा अरबी के रदसु के मी हुन एगो मिगो बेगे दो स्वर्ग आवेस मी ना वी मदीना के बेरिक मसा इस्लाम दीन वफात रिकम का फैत साबित को गिन हुरी मी हुकम गए
1: दीन गाडो मिगनस्तनी खीरत रसूल आगे सीरत
0: غزوت بني لحيان لحيان وانها ميهم غانغرا لحيان وانها ميهم نكي عاصم بن ثابت غفاناي اكل غفان غاريو غا وداغي اصحاب بكجناي غانغرا مك قتل كلا ميهم نل فه سلاما صلى الله عليه ايت الرسول دو غفان ميهم غي كبان اكنتو غي بدل هيبيوم غي شوق وير كم غا ميهر غي ربيع لبل مها همي ابس هنو هنوي اينهن كنتكاي غانغرا مت غينكم تمبل ناس غين ميهر ربيع لبل مها اصحاب بكجنا دتر تيارو من امر كربا فيه मी दत्तुर वडागन नवां उलुबनी कौन तनक कबे नवां गावते मी गिना गिना दत्तुर फुगा एक इफान एकंत कुरबा आदे यही अदावे तेरी नंग एक इफान कुरबां उलुबा कंतं एंगुना नुदे पहुँचे मी दत्तुर फुगा मदीना के मच्चा बेर कुरबी इब्नो उम्मी मक्तू में दिन द्विसत्त सवारुन नागिन दत्तुर कुरबा फा एकल बेकलुन शहीद हुई तन वडागिन ए बेकलुन नंग हेदु आफ कुरबा हिद्दे भी लहियान वंगा मी हूँ कंतकुल गोतकी एक इफान वडागन नवा वाहक हम इवम फिला रक्का विजय दें इतुर के इफान इतांगा फाबा वडागिंग हुन्नो आगिंग फराय फरात सवारुंगे जमाए जमाए फुनुबा एमी हुंगे एबिस खबर नुये आदि मितंगलुगा इस्लाम के लश्कर उलेखन मक्का के मीहुनंग इगेने गोतुं लश्करुंगे बैकु असफान अबिस फुनुबिये दें सलामाय सल्लल्लाहु अलैहि रसूल दो इफान मदीना ए इमरी वडागिंग फिये गज़वतुल गाबा गाबतु हंगुरा सलामाय सल्लल्लाहु अलैहि रसूल दो इफानुंगे विसक ओ गाबते के तनिगा हुई हप्पा मीहकु गेंगोस गें ओलेनिको ويا ناس بنا حسن متجتي فيري جم فيه مخبرو يترو كذا جفانا إيه وداع جم فيه مخبرو جنني بيكذا كي سلامت بنا الأقوى جفانة مكذا جفانا كي أنصاري بيكذا جم كره دوني جندي كل دانا دوجة بما كل دانا بيكذا كي مكذا جفان مخبر أجم وداع كتب من حديث كره بيت من كذا جفان لسكر أجم وداع جم بدل كره باندين كذا جفان إميهم كفاهتهم غص دوني وكا إميهم نداتي كره باره دين إيه سلامت جفان دوجة غص إميهم دوني وكوان فتوى فيه एमीहुं के अस्तं अम्राला एक जगफानाई दिमाग को लोंग आतुनो एदुए रक्का वेदे एमीहुं दांबी फरासं अस अम्रा दुबां फिरमु नुकुन्नवा दुनी उक्कवां फट्टा वते एमीहुं दाती मगकुं दानम मच्चं अरुबा हिला उक्का वते फहे मिकाफरुन ना मिका जगफानु के उंदगुता बड़वेगें दातुरो नुएवी दातिकन जिबी अतुगा हुरी तकतीं बाये दुखफावेस लस्करु ना ननीस रक्का वे तो मसके को कमफुला गुते नुए मिहाजिगा उले उले तिब्बा इस्लाम के लस्करु आयस बदल को फिये काफरों के गाफिला के फहत कोलाई इस्लाम के लश्कर बदल को एमी हम फेर गिन दिया तकती के एब्बा अतला हुए काफरों के तेरे देमी हुनाई इस्लाम को एक को गतुल भी मिकंग हिगायरंग ए गाफिला के कुरी कोल के मी हम दुए फिला रखा विजे दें इतु रसूल इफान मदीना एं इम्री वडागे फिये सरियतु मक्का याई मदीना याई दिमेदु गिम्रे की एक ओटे गा तिबे असद वंहा के काफरों नकी